0: गर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरबीनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
1: सम्पर्क गणपति क्लिनिक, सुर्खेत रोड, नेपालगंज, नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने, पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081531366 र 98050 49451।
2: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
3: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
4: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध।
5: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई। कृषि पेसा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कई के रोजगारी सृजना करी हो कराई।
4: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी, खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई,
5: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई, व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी,
4: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय है निरन्तरता दी आगे बढाई हो बढाइक लगाई। कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली, वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई। एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निशेकना हुईले ओहर से हमरे निजी व सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई।
5: थप आवश्यक सरसल्लाह व जानकारी के लाग लगभग संघे व प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय व स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा।
4: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग व तालिम केन्द्र खजुरा बाँके।

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: होए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: हाय के गर्ने होला अब सुगर पनि बढ्दै छ थायराइड को समस्या अझ छुट्टै छ कति ठाउँमा देखाए तर भएन।
2: ए तिमी यति चिन्तित किन के भयो फेरि
1: के भने नि डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
2: ए अब चिन्ता लिनु पर्दैन मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
1: कस्तो खबर?
2: अब प्रत्येक दिन सुगर थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही एमडी इन्टरनल मेडिसिन टियु एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गङ्गाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
1: ए साँच्चै?
2: अझै सुन महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
1: ए त्यो त झन् राम्रो
2: हो नि। डाक्टर पूनमाचारी एमबिबिएस एमडी केयु आइभीएफ स्पेसलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई एमबिबिएस एमएस केयु वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
1: वा अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
2: अझै अरू सेवाहरू पनि छन्। दैनिक ओपिडी सेवा गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा भिडियो एक्सरे एक्सरे इसिजी तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
1: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
2: हो त अब ढिला नगर जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: California. Extreme energy drink.
1: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुक्रन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
2: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी ओ बनाई कृषि पेसा हे मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी ओ कराई
1: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
2: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
1: सफल उद्यमी बनी हो व्यवसाय हे निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्र में व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी और सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकार्यक लाग प्रयास करी वो कराई
2: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी के लाग लगभग संघीय वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
1: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग और तालीम केन्द्र खजुरा बाँके
3: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन् खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर
4: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन
3: कति अस्पताल धायौ कति उपचार गरायौ अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ
4: होइन हामीसँग अझै आशा छ मैले शुभश्री आईवीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ
5: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित
3: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो
4: धन्यवाद शुभश्री आईवीएफ हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा
5: थप जानकारीका लागि शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक सोल्टीमोड काठमाडौँ फोन नम्बर 9816 14 16 99

आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 12 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: जे अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रीमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवन को लागी।

0: Koyle Ponyo. Extreme energy drink.
1: ओहो आज दाई हूँ नहीं मजा लगा तो मजा से दवाई करेना कहतू
2: ये तो ओकर लाग कांति आरोग्य अस्पताल जाई ना पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कांति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
1: ए बात तो ठीक कहलो साची की अस्पताल में का सुविधा मिलत त
2: वहां त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे एनआईसीयू पीआईसीयू आईसीयू हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहां पा जाए छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहां कई जाए
1: ए ओसिनो कला से वहां जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह
2: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउ रोजना हो कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कांति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा
1: कान के समस्या बा उपचार कराइकला कहाँ लैजिना हो
2: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केन्द्र मा जाइन वहाँ त अनुभवी चिकित्सक को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुई ओतरकेल कहाँ हो वहाँ तो लंबा समय से कान पकती रहना जीर्ण रोग काने ढुसी कान खजोइना कान कम सुनना कान दम्मा हुईना विटामिन के उपचार और परामर्श वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हड्डी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार हुई वाकर संगे कान कम सुनना विटामिन के लाग कान में लगाइना सस्ता व महंगा ढेर प्रकार के कान के मशीन विटामिन के रोजाई अनुसार के उपलब्ध फे करा जाए जस्ते बीटीई सीआईसी आरआईसी जैसी मशीन फे वहाँ मिलत
1: ए ओसिड हो कल से बुढ़ू हो वहाँ ले जाके उपचार करेले से वजह से सुनो से कही ट
2: एकदम समय में उपचार करेले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 98-84-20-697 98-85-23-697 वो 98-014-83-697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी
1: खुशी के खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी
2: जस तक सर्जरी के सक्कु उपचार प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार मस्तिष्क हो मानसिक रोग के सक्कु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आयल बा
1: उस तक सुगर ब्लड प्रेशर मुटु रोग पेट छाती कलेजो संबंधी सक्कु उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और सक्कु सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी
2: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सक्कु डॉक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज संपर्क नंबर 081-536-465 98-249-80-665 98-482-80-465

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9848020697, 9858023697 और 9804483697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
0: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाह जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ ही जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081536465, 9829808665 और 9842804465।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो
1: आ रेडियो लिए घुमत हो
2: अरे इमा कोई प्रोग्रामवा सुने मारे रेडियो वाले बैठे हैं ना और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना तो हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे एफएम से दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गौवा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे किरौमिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो कृषार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।

0: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार। कार्यक्रम चना जोर गरम सुनने वाले सब यार दोस्त का प्यार भरा सलाम और नमस्कार। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, सुन के आ जाओ ये दोस्त आवाज़ मेरी। हाँ तो श्रोता आप लोग सुना जाता है आप के प्रिय रेडियो कृष्ण सार FM 94 मेगाहर्ट्ज़ से जो चलत है कार्यक्रम चना जोर गरम, जो दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक लेके आए गए हैं, जी हाँ आप लोगन के यहाँ प्यारा प्यारा नात कव्वाली सुने का मिली, नात कव्वाली सुने के यहाँ है। तो आप लोग भी मैसेज भेजा जी, नंबर में फ़ोन भी किया जाए, अपने मन पसंद के भी सुन सका जाता है। आज के दिन में आपका नात कव्वाली से कार्यक्रम चली। हाँ तो साथी ऐसे ही कार्यक्रम जो आप लोगन के प्रत्येक हफ्ता बीफे के ही आवत है 1 बजे से 3 बजे तक। तो हम आज जो आप लोगन के दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह के श्रोता लोग जो कार्यक्रम का सुनत हैं, तो हमरे जो हम मियाँ जी के तरफ से और हमरे जो प्रावधिक माँ चंदा जी हैं दोनों जने के तरफ से फिर से हम आप लोगन का दिल से नमस्कार करते हैं। और आप लोग भी एकदम कार्यक्रम में यहाँ साथ दिया जाए, कार्यक्रम में सुझाव सलाह प्रतिक्रिया कोई कमी कमजोरी हो का भी बतावा जाए। तो साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुने कैसी 415-122 के लिए नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970-81-415-122 के लाइन में। ये हमारे देश विदेश अन्य देश के विश्व के जहाँ से आप फ़ोन किया जी, विश्व में जहाँ भी, तो ये कार्यक्रम का आप लोग सुना भी जाते देखा भी जाते। तो साथी आप लोग कार्यक्रम के यहाँ एकदम लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रह जी। तो आज के जो हम क्वेश्चन रखा है क्वेश्चन के उत्तर दिया जी, उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार देवे, पुरस्कार टी शर्ट देवे कहाँ से देवे, तो आप लोग जान जाओ जाए। आप लोगन के माना जाना हुआ ज्योति टेलर जो सदर लाइन वार्ड नंबर 4 में है, जहाँ सब मेर के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सलवार सब मेर के कपड़ा कुशल कारीगर द्वारा सिया बना हो जाता है, वहाँ से आपका टी शर्ट देवे। तो आज के क्वेश्चन के क्वेश्चन जो है आप लोग एकदम ध्यान से सुना जाइए। पहला नंबर में है, हाँ पहला नंबर है कि हाँ आप लोग एकदम प्यार प्रेम के साथ में सुना जाए। हाँ पहला नंबर में है जो कार्यक्रम में यहाँ एकदम ध्यान से एकदम सुना जाए। हाँ जो पहला नंबर में है छोटा सा काला घर, छोटा सा काला घर पर चलता है इधर उधर एक नंबर में है। दो नंबर में है बीमार नहीं, बीमार नहीं रहती फिर भी खाती, बीमार नहीं रहती फिर भी खाती गोली, बच्चे बूढ़े सुन के डर जाते हैं इसकी बोली। हाँ तो साथी दोनों का एकदम उत्तर दिया जी, उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार देवे। तो ये कार्यक्रम जो आप लोग सुनाया था यहाँ पे के प्रिय रेडियो किसी सारे FM नेपालगंज वार्ड नंबर 12 बिलासपुर से ही अपने बांके जिला जो अपने अपने नेपाल के बांके जिला के जो नेपालगंज बिलासपुर से ही कार्यक्रम रेडियो जो चैनल है कृष्ण सार FM वहाँ से कार्यक्रम चला था। तो श्रोता आप लोग फोन में जुड़ा जी 98081-415-122 के लाइन में, और जो देश विदेश के साथी हो तो आप लोग 00970-81-415-122 के लाइन में आओ जी। मैसेज आपका पठोई का है तो 98-55-96-3 से 6 माँ मैसेज भी अपने मन पसंद के नात कव्वाली लिख के पठवा जी छोटकरी माँ। तो साथी अब हम चले थे पहले प्यारा से कव्वाली तरफ, फोन लाइन में कोई आए गए हैं? हाँ तो पद हमरे कोई श्रोता आए रहा है चले गए, आवे जाग तो इससे हो जाते, कहते हैं बरखा गरीत बदर के छाही लाग गा तो हाँ नहीं तो नहीं, कभी नेटवर्क कमी कमजोरी। हाँ कोई आए गए फिर नमस्कार।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: वालेकुम अस्सलाम, आपके नाम?
1: अब्दुल मन्नान बठवा।
0: अब्दुल मन्नान, और अब्दुल मन्नान जी हाँ बस हमारे लोगन के तो सब ठीक है, अपने बठवा बासिंदा लोगन के बताओ, घर परिवार के बताओ।
1: तो बढ़िया
0: बस बढ़िया रहा जाए ना, खुश रहो, आबाद रहो, चाहे नेपाल में रहो, चाहे चले जाओ इलाहाबाद रहो, मैंने खुशहाल रहो। हाँ तो अब्दुल मिन्नान जी, जैसे आज बहुत देर, बहुत दिन पर आए हो, कहाँ रहे हो? अच्छा आप दर्जी तो हो है नहीं? अच्छा तेली हो आए, तो तेल वोल तो फिर आवे तुरे नहीं चले आवा जी, अब कहूँ ना जाओ जी। अच्छा उत्तर दिया जाए अब्दुल मिन्नान जी।
1: आपकी मतलब इंटरव्यू देगा हम जब आपके वहाँ,
0: हाँ
1: तो जो नाज शरीफ पढ़े ना नाज शरीफ वही आवाज में हमका सुनाई दिया जी मियाँ जी।
0: कौन और कौन नाज शरीफ?
1: हस्ती मिटाई खून बहाया हुसैन ने।
0: तो आप ही सुनाई दे।
1: अरे आप सुनाई दिए जी,
0: वहीं से सुनाई दो, आपका इजाजत है।
1: अरे आप सुनाई दिया जी हमारी आवाज में,
0: आप हम सुनाई दे बे?
1: जी आप सुनाई दिया जी, मतलब वही रेडियो से हिर
0: ना ही। तो अब हमका थोड़ा सर्दी बुखार ज़्यादा है ना, आवाज़ में भी गड़बड़ है, बाद में देखा जी, या तो आपका सुना को सुनाई दो। तो क्वेश्चन के उत्तर दो।
1: क्वेश्चन के उत्तर हम अभी भक्करी एफएम लगाए को तुरंत एक सुन लगाए जी, क्वेश्चन हम सुनबे नहीं आए कि दिन मियाँ जी।
0: तो बताइए दे हो उत्तर
1: जी। क्वेश्चन है हम ना सुने हैं मियाँ जी।
0: हाँ
1: क्वेश्चन है ना सुने हैं।
0: बीमार नहीं रहती फिर भी खाती गोली, बच्चे बूढ़े डर जाते हैं सुन के इसकी बोली। एक नंबर माँ है, दो नंबर माँ है, छोटा सा काला घर पर चलता है इधर उधर।
1: चिड़िया एक नंबर माँ है, चिड़िया का घर।
0: हाँ
1: और दूसरा नंबर नहीं पता है मियाँ जी, एक नंबर तो पता होगा, मतलब दूसरा नंबर नहीं पता है मियाँ जी।
0: ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम। हाँ साथी खजुरा गांव पालिका बठवा से रहा है अब्दुल मिन्नान तेली जी। तो साथी ऐसे सुना है कैसी 4-15 से बैस के लाइन में आवाज़ी नेपाल के साथी, नेपाल से बाहर के साथी 00970-8415-1122 के लाइन में आओ जी। अगर आप लोगों का अपने मनपसंद के नात कवाली सुने का है तो आप लोग 9855-9936 मैसेज भी भेजा जी। साथी आप लोगों का पूरा नंबर बताओ जाते है। तो अब हम चलित है, पहले व्यापारी विज्ञापन है कि पहले व्यापारी विज्ञापन तक है, आप लोग सुना जी प्यारा से कवाली।
2: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो, सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
3: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
2: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
3: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबिएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
4: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
2: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
3: धन्यवाद शुभश्री आइबिएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
4: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक सोल्टीमोड काठमाडौँ, फोन नम्बर 9861414900।
5: के तपाईँले आफूले प्रयोग गर्ने तोरीको तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ? तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईँ आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति तेल आफ्नो हातमा लगाई बाँच्न सक्नुहोस्। शुद्ध तोरीको तेलमा नेचुरल राग सधैँ आउँछ र त्यो नेचुरल राग धारा शुद्ध तोरीको तेलमा सधैँ आइरहन्छ। हो, तपाईँले पनि तेलको क्वालिटी आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, सबै तेल धारा तोरीको तेल जस्तै शुद्ध चाहिँ नहुन सक्छ। विगत 3 दशकदेखि नेपालीको मुटुलाई स्वस्थ बनाउँदै नेपालको पहिलो एनएस चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा, मुटु चाहिन्छ मुटु।
6: खुल्यो
7: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
6: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
7: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
6: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँके।
7: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा।

0: आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रीमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवन को लागि।
3: हाम्रो गाउँ हाम्रो शहर, सफा सडक, गुणस्तरीय शिक्षा, भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा र विकासका नयाँ सम्भावना,
4: यी सबैको बलियो आधार हो हामी सबैले इमानदारी पूर्वक तिरेको कर।
3: समयमै कर तिरौं, जिम्मेवार नागरिकको परिचय दिउँ,
4: किनकि आजको हाम्रो करले नै भोलिको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्छ।
3: कर तिरौं समयमै, विकास गरौं सँगै।
4: कर हाम्रो दायित्व, समृद्धि हाम्रो लक्ष्य।
3: आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्ज र रेडियो कृष्णसार एफएम द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
5: निसन्तानपन सम्बन्धी निशुल्क स्वास्थ्य शिविर नेपालगञ्जमा यही आउँदो 2083 साल असार 27 गते शनिबार शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक काठमाडौँ र मध्य पश्चिम पोलिक्लिनिक प्राली नेपालगञ्जको संयुक्त आयोजनामा निसन्तानपन सम्बन्धी विशेषज्ञ डाक्टर प्रियङ्का त्रिपाठी आइबिएफ एक्सपर्ट सहितको टिमबाट निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुन गइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौ। प्रदान गरिने सेवाहरू: ओपिडी निशुल्क, वीर्य परीक्षण निशुल्क, अल्ट्रासाउन्ड निशुल्क र ल्याब परीक्षणमा 15% छोट। स्थान: मध्य पश्चिम पोलिक्लिनिक प्राली, नेपालगञ्ज 10, बाँके सदर लाइन, टाङा स्ट्यान्ड नजिक। समय: नाम दर्ता तथा अन्य जानकारीका लागि समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। सम्पर्क नम्बर 9861414919।

वात्सल्य हेल्थ केयर एन्ड डायग्नोस्टिक सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क 9805532568।

0: 5 बाँकी।
1: सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 081-536-410 र 98-480-26-435।
2: दैनिक रु 197 रु 50 लाखको बिमा तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
3: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
4: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज, कृष्णसार जस तेज।

0: हाँ तो श्रोताई, प्यारा से कवाली छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद माँ फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। तो आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुने कैसी 415-122 के लाइन में आ जाए, कैसे कार्यक्रम जो आप लोगन के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चलत है आप के प्रिय रेडियो कृषि सार FM 94.94 MHz से। तो आज के क्वेश्चन है, बीमार नहीं रहती फिर भी खाती गोली, बीमार नहीं रहती फिर भी खाती है गोली, बच्चे बूढ़े डर जाते हैं सुन के इसकी बोली। हाँ तो साथी, एक नंबर माँ है, दो नंबर माँ है, छोटा सा काला घर पर चले इधर उधर। हाँ दोनों का सही उत्तर दिया जी, उत्तर दे वाले श्रोता का पुरस्कार टी शर्ट देवे। तो साथी, ऐसे कार्यक्रम जो आप लोगन के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चलत है, तो इसे आप ही लोगन के पठवा मैसेज भी बहुत हमरे थिर आएगा है। मैसेज भेजे वाले साथी हैं, ये जेसपुर वार्ड नंबर 4 शिव मंदिर चौराहा से मैसेज भेजी है अमर लाल सोनी जी लिखी ने। सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है कहने, आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा था, आपके कार्यक्रम के जितना भी तारीफ किया जाए उतने कम है, धन्यवाद है। तो इनके साथी हैं जैसे रघुनाथपुर के अशोक सोनी, कुड़वा के ओंकार नाथ सोनी, बशीर और तमाम साथी लोगन का सुनाव चयन है। ऐसे खजुरा बाज़ार से जो मैसेज भेजी हैं, जो ये खजुरा बाज़ार पेट्रोल पंप के ठीक सामने से पवना गुप्ता जी जो उर्फ नान बाबू, हाँ कहने की कोई प्यारा सी कव्वाली सुना दिया जी। साथी हैं विनोद हैं, राजा बाबू हैं, ऐसे विनय हैं, काजल हैं और कोमल हैं और कहने सनी हैं, किशन हैं, राजू हैं, सलीम हैं और तमाम साथी लोगन का सुनावा चाहिए है, धन्यवाद है। ऐसे दूसर मैसेज आएगा है, मैसेज भेजी ने मैसेज भेजे वाले हैं खजुरे बाज़ार से मैसेज आवा है, मैसेज भेजी ने बिंदुश्री ठाकुर नीतू हेयर कटिंग सैलून जो खजुरा बाज़ार पेट्रोल पंप के बगल माँ, वहाँ से इन्हों कहने कि आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा था, धन्यवाद है, कोई प्यारा से नात कव्वाली सुना दिया जी। ऐसे दूसर मैसेज है, मैसेज भेजी ने चौलिका चौक से मैसेज भेजी ने बशीर शेख पान वाले, ये लिखी ने सर्वप्रथम संचालक मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा सलाम अलैकुम। तो वालेकुम अस्सलाम, ये कहने आपके बोली बहुत अच्छा लगा था, आपके कार्यक्रम के जितना भी तारीफ करा जाए उतने कम है, हाँ धन्यवाद है। बशीर शेख पान वाले इनके साथी हैं, जैसे इनके साथी में यहाँ हैं इमरान शेख हैं, ऐसे इरफान शेख हैं, हसीना शेख हैं, रिहाना शेख हैं, हीना शेख हैं, प्रमोद हैं, अमरलाल सोनी हैं और अपने तमाम साथी लोगन का सुनाव चाहिए है। ऐसे जानकी गांव पालिका वार्ड नंबर 3 से जो इंदरपुर से मैसेज भेजे हैं मोहम्मद हाजी शमसुद्दीन बेहना, इन्होंने लिखी ने सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम, कव्वाली कहने नबी के वास्ते कव्वाली सुना दिया जी कि नबी के वास्ते, ठीक है कव्वाली हम आपका सुनेवे, कहने हमका हाजी मोहम्मद शमसुद्दीन कहके चिन्हे जाने वाले सब लोगन का सुनावा चाहित है। ऐसे दूसर मैसेज आवा है, मैसेज भेजी नहीं, ये मैसेज भेजे वाले साथी हैं, इनके ठिकाना है भुजई गांव चौराहा से जो ये मैसेज भेजी नहीं है इनके हंसराम साहू जी, कहने मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है, आपके आवाज़ आपके बोली बहुत अच्छा लागत है मियाँ साहब, आपके आवाज़ जब सुनी थे तो बहुत अच्छा लागत है, जितना भी तारीफ़ करा जाए मियाँ साहब उतने कम है, आपसे आपका यही दुआ भगवान से अर्ज किया जाता है कि आपके बहुत लंबी उम्र होए, आपके बहुत लंबी जिंदगानी होए, धन्यवाद है आपका हंसराम साहू जी। कोई साथी हमारे फ़ोन लाइन में आए हैं, देखिए को कहाँ से हैं। हाँ नमस्कार, नमस्कार,
1: नमस्कार,
0: आपके नाम?
1: रूपा बड़ही।
0: रूपा बड़ही, और रूपा
1: बढ़िया है?
0: बढ़िया है। भात वात खायो?
1: हाँ खाए थे।
0: दोपहरी वाला?
1: हाँ खाए थे।
0: वही बोला तो धीरे धीरे वही बोला थी धीरे धीरे खाए होती तो जान पते जंगरवे नहीं है
1: तो हमारा आवाज़ नहीं सुन है।
0: आई रे अल्लाह तो आवाज़ वो इतने है आए ससुईया गोहरे तो सुनी न पाई हो तू गोहरे हो तो ससुईया सुनी न पाई आए। हाँ रूपा जो उत्तर देव कार्यक्रम में जो क्वेश्चन है
1: पहला और एक छतरी एक बंदूक और एक छतरी
0: एक बंदूक एक छतरी हो आए ठीक है रूपा जी। हाँ नमस्कार
1: नमस्कार।
0: हाँ रूपा बढ़ ही रहा है साथी डलईपुरवा से तो इसे सुने कैसी 4-15 से बैच के लाइन में आवाज है कहे से कार्यक्रम जो आप लोग के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाल पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चलत है आप के प्रिय रेडियो किसी सारे फेम 94 मेगा हर से। तो साथी इससे दूसर मैसेज है मैसेज भेजे वाले साथी हैं ये मैसेज आवा है बिजनौर से मैसेज भेजी ने मुकेश कुमार बरनवाल जी इन्हों लिखी मियाँ साहेब अस्सलाम वालेकुम तो वालेकुम अस्सलाम कहने कोई प्यारा से कव्वाली या नाच सुना दिया जाए और आपके कार्यक्रम के जितना तारीफ करो उतने कम है धन्यवाद है आपका मुकेश कुमार बरनवाल जी। ऐसे दूसर मैसेज आवा है मैसेज भेजी ने खीरी लखीमपुर जो धौरारा से मैसेज भेजी ने हाँ गुड्डू गुड़िया ये लिखी ने कि आपके कार्यक्रम हम लोग बहुत प्यार से सुना जाता है हम लोग मल्ला ही काम करा जाते हैं यानी नाव भी चलाया जाता है नदिया में शिकार भी खेला जाता है मियाँ साहब मगर आपके कार्यक्रम सुने भूला नहीं जाते धन्यवाद है कहने को अच्छा कव्वाली सुना दिया जी। ऐसे दूसर मैसेज आवा है मैसेज भेजी ने जिला बहराइच उत्तर प्रदेश भारत जो नवाबगंज अलियाबाद से जो इश्तियाक राय जी बक्सी गाँव से इन्हों कहने प्यारा से कोई कव्वाली सुना दिया जी आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा था। इसे दूसर मैसेज आएगा ये मैसेज भेजे वाले हैं जो भंगहा बाजार जो ये गौर्रा से मैसेज भेजी ने मकबूल जी मकबूल मियां मैसेज भेजी ने कहने भाई अस्सलाम वालेकुम तो वालेकुम अस्सलाम कहने आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है और राप्ती नदी के किनारे हमारे लोगन के खेत है और वहाँ मैंने पाही है वहाँ हम लोग आपके कार्यक्रम बहुत प्यार प्रेम से सुना जाता है आपका आपके पूरे रेडियो टीम के जितने कार्यकर्ता हैं सब लोग इनके कार्यक्रम बहुत सुना जाता है धन्यवाद है कहने कोई अच्छा से कव्वाली सुना दिया जी। तो साथी ऐसे दूसर मैसेज आएगा मैसेज भेजे वाले हैं ये मैसेज भेजी नहीं है दल सिंगार यादव खजुरा नाहर खजुरा से जानकी गाँव पालिका 4 से साथी हैं खलील बहना है गोबरे प्रधान है और तमाम साथी लोगन का सुनाओ चाहिए चिन्हे जाने वाले सब लोगन का। तो साथी अब हम फिर चलित है छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद में सुना जी प्यारा से कव्वाली नबी के वास्ते

0: toilet pony, yeah. Extreme energy drink.
1: Beer Dental.
2: नेपालगञ्ज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेन्टलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
3: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
2: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
3: फोन नम्बर 081-532-375। नेपालकै एकमात्र अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा। सन् 2016 डाक्टर लियोनार्ड लिङ्को फाउन्डेसनद्वारा बेस्ट डाक्टर ओआरद्वारा सम्मानित डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठ, एनएमसी 19393, बिडिएस दिल्ली, एफएजिसी मणिपाल, सर्टिफाइड इम्प्लान्ट एन्ड लेजर डेन्टिस्ट्री अमेरिका, सर्टिफाइड बोटक्स एन्ड फिलर स्पेसलिस्ट युरोप, एडभान्स सर्टिफिकेट इन जेनरल डेन्टिस्ट्री क्यानाडा, मिनी रेजिडेन्सी इन इन्डो डेन्टिक्स साउथ कोरिया, यी विभिन्न देशहरूमा अध्ययन गरेका डाक्टर प्रतीक श्रेष्ठद्वारा उपचार गरिने अत्याधुनिक डेन्टल क्लिनिक अब नेपालगञ्जमा।
2: विशेषताहरू: दुखेको दाँतहरू जराबाट नै भरेर नदुख्ने बनाउने, बच्चाहरूको दुखेको दाँत जराबाट भर्ने, किरा लागेको दाँतलाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, दाँतमा खोल लगाउने र दाँत नभएको ठाउँमा दाँत हाल्ने, मेटल क्राउन, बाङ्गो दाँतलाई तार बाँधेर सिधा गर्ने, वृद्ध अवस्थामा भएको बुढाबुढीको पुरा दाँतको सेट लगाउने, दाँतलाई प्रत्यारोपण गर्ने, चाउरी परेको अनुहारलाई राम्रो पार्ने, आँखा तल खाल्टो भएकोलाई भर्ने, सबै उपचारहरू दूरपिनबाट गरिने, डिजिटल एक्सरे सेवा।
4: सम्पर्क गणपति क्लिनिक, सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज नर्सिङ होम नजिकै कुसुम पेट्रोल पम्पको सामुन्ने, पासङलाम रोड जाने बाटोमा। फोन नम्बर 081-531-366 र 98-085-49-451।
5: दैनिक रु 197 रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
6: सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स जीवनको लागि।
7: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पिरात है, बहुत दवाई कराए डारे, ना ही ठीक आते।
8: सुनो बहनी, खुशी के खबर,
9: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपे न पड़ी। पश्चिम नेपाल में यह एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
8: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और वहाँ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रे और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथेन कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथेन प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
8: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-531-000।
11: अम्मा के दवाई करावे के, लेकिन समझ में ना आवत है कि कौन अस्पताल में ले जाए।
12: कांति आरोग्य अस्पताल है ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शैल चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
11: अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है तो?
12: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जले घाव के उपचार करे साथेन NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
11: अस है तो अम्मा के यहाँ आज लेके जाये थे कांति आरोग्य अस्पताल में यहाँ।
12: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सब मेयर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081-535-717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतने कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुनने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसे मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली, नेपालगंज छ फुलटेकरा, आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: आए लाखों पैगंबर जहां में मगर इतना अल्लाह को कोई प्यारा नहीं। अर्शे आजम पे एक मुस्तफा के सिवा फिर खुदा ने किसी को पुकारा नहीं। ये मोहब्बत अकीदत है एहसानी है, ये नवाजिश मेहरबानी ये शानी है। मेरी उम्मत जहन्नम का मुंह

0: ये रसूले खुदा को गवारा नहीं,
1: जो मोहम्मद की उल्फत का कायल नहीं, दोनों आलम में उसका गुजारा।

जफा करने वाले जफा कब करेगा, जफा करने वाले वफा कब करेगा, बता तो सही फैसला कब करेगा, सहर हो चुकी इल्तिजा कब करेगा तू।

इबादत खुदा की बता कब करेगा, जो वादा किया है वफा कब करेगा। दिलो जान उन पर फिदा कब करेगा।

न बगीचे न फूल न किरने न तारे न सूरज न सितारे, ये सब मेरे नबी का सदका। और क्या क्या सदका मुलाजा करते रहिए।

कयामत में राहत नहीं मिलने वाली। अगर दिल में इश्क़े मोहम्मद नहीं तो चल हट, नमाजों से जन्नत नहीं मिलने वाली। अगर दिल में इश्क़े मोहम्मद नहीं तो हट, नमाजों से जन्नत नहीं मिलने वाली। क्योंकि नमाज पढ़ता है कायल नहीं वसीले का, तू अपना काम खिलाफे उसूल करता है। और जिसे ख्याले नबी रहता है नमाजों में, खुदा उसी की नमाजें

0: मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिको तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज।
1: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे के रहा है, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताए दियो हमका।
2: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ ऑर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथ टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जाते है।
1: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
2: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844885375 और 9808245437।

0: Toilet Pony, Extreme Energy Drink.
1: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी, सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
2: हम भी पहले गैस्ट्रिक, बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहे। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होत है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
1: सही, वहाँ का सेवा मिलत है तो भैया
2: सुनो। हुआ औरतन के बांझपन, सफेद पानी, महीनावारी में गड़बड़ी, गर्भवती जांच, बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होत है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, थायराइड, पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
3: हाँ, मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नाम दर्ता करके तहे दिल हुआ जाए।
2: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ। संपर्क नंबर 97649 11786, 98224 92377। सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
4: सोचे भन्दा सस्तोमा हाई क्वालिटी का सोफा र फर्निचर चाहियो, आउनुहोस् सोफा हब नेपालगंज।
5: हरेक सामान को खरीद में 1,000 देखि 20,000 सम्म छूट, 10 देखि 15 वर्ष सम्म को वारंटी, साथ ही फ्री डेलीवरी को सुविधा पनि।
4: अहिले थमाथम बिक्री भइरहेको छ। स्थान राजा चोक राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक को अगाडि।
5: संपर्क 97051148470।
4: सोफा हब नेपालगंज,
5: विश्वास में नंबर 1,
4: क्वालिटी में सब भन्दा बेस्ट।
6: निसन्तानपन सम्बन्धी निशुल्क स्वास्थ्य शिविर नेपालगंजमा यही आउँदो 2083 साल असार 27 गते शनिबार शुभश्री आईवीएफ क्लिनिक काठमाडौँ र मध्यपश्चिम पोलिक्लिनिक प्राली नेपालगंजको संयुक्त आयोजनामा निसन्तानपन सम्बन्धी विशेषज्ञ डाक्टर प्रियंका त्रिपाठी आईवीएफ एक्सपर्ट सहितको टिमबाट निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुन गइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौ। प्रदान गरिने सेवाहरू: ओपिडी निशुल्क, वीर्य परीक्षण निशुल्क, अल्ट्रासाउन्ड निशुल्क र ल्याब परीक्षणमा 15% छोट। स्थान मध्यपश्चिम पोलिक्लिनिक प्राली नेपालगंज 10 बाँके सदर लाइन टाँगा स्ट्यान्ड नजिक। समय नाम दर्ता तथा अन्य जानकारीका लागि समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। सम्पर्क नम्बर 98164 1469।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो।
1: अरे रेडियो लिए घूमत हो?
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले ये बैठे हैं ना और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना था हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे एफएम से दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गौवा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे कि राव मिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।

0: हाँ तो श्रोताई विज्ञापन और प्यारा से कव्वाली सुना गए के बाद में आप लोगों का फिर से स्वागत है। कोई साथी हमरे फोन लाइन में आए हैं उनका पहले स्वागत कर लिया जाए। हमरे प्रद्युमन चंद्रा जी कहते निया जी पहले उनके स्वागत कर लिया जाए।
1: हेलो
0: नमस्कार साथी, एक दौर हलाओ करे गाय भैंस लौटा रहे थे ना और गए भाग गए। हाँ तो इसे भाग जाए तो होते हैं। तो साथी इसे नंबर में आ जाए सुनने के 8415 से वैस के लाइन नेपाल के साथी आओ जी। नेपाल से बाहर के साथी 00970 8415 से वैस के लाइन में हमारे देश विदेश पड़ोस भारत के अन्य देश के साथी लोग आओ जी। कैसे कार्यक्रम ऑडियो वीडियो दोनों जाते हैं, आप लोग का सुना भी जाते देखा भी जाते किसी सारे फेम सर्च किया जी आपके पूरा वीडियो में आप लोग पावा जी हम लोगन के यहाँ। तो ऐसे आप लोगन के पठवा मैसेज आवा है, मैसेज भेजे वाले हैं, ये मैसेज आएगा है लिखे वाले साथी हैं कल घरवा से मस्त राम पाठक जी। ओ ये लिखने दम्भोजी से मस्त राम पाठक जी लिखने की सबसे पहले मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है कहने आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, आपके कार्यक्रम के जितना भी तारीफ किया जाए उतने कम है। कोई प्यारा से अपने मन पसंद के कोई भी नात कवाली सुना दिया जी, धन्यवाद है आपका मस्त राम पाठक जी। ऐसे छंगा पान वाले जो शिव मंदिर से जो धम्भोजी जो खजरा रोड से जो मैसेज भेजी नहीं लिखी ने मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार है कहने कोई अच्छा गीत सुना दिया जी, उनका छंगा कहके चिन्ह ना चिन्ह वाले सब साथी लोगन का जहाँ तक आपके रेडियो के सुनाई जाते। तो साथी रेडियो के सुनाई तो विश्व में जाते दुनिया भर में जाते, कहे से ऑनलाइन के जमाना आएगा अब वो जमाना गवा। तो कहने कोई प्यारा से कव्वाली सुना दिया जी तो इससे धन्यवाद है। ऐसे दोसर मैसेज आवा है मैसेज भेजे वाले हैं ये लिखे वाले हैं सबसे पहले लिखी नहीं है आपके कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, आपके कार्यक्रम के बहुत हम लोग नेमी सुरता हन कार्यक्रम के यहाँ आप और टेम बढ़ा दिया जाए तो और बहुत बड़ा टेम बढ़ा दिया जाए। अब ऐसे यहाँ दो दो तीन तीन घंटा तो इनके ठिकाना है इनके बहुत दूर के मनई हैं गोंडा बलरामपुर गोंडा बलरामपुर गांव केशवापुर से मैसेज भेजे हैं। हाँ रामू मौर्या कहने बहुत अच्छा कार्यक्रम लागत है और हम लोग बहुत प्यार प्रेम से सुना जाता है, धन्यवाद है रामू मौर्या जी। ऐसे दूसर मैसेज आवा है मैसेज भेजे वाले साथी हैं ये मैसेज लिखी है लाल मोहम्मद ठाकुर जोई जनता हाई स्कूल खजरा गांव पालिका बांके से इन्हों कहने कि हमका सुना दिया जाए कव्वाली ए रात अंधेरी है एक दीप जला रखना मैं आऊँगा मिलने को दरवाज़ा खुला रखना। हमरे लाल मोहम्मद ठाकुर जी के फरमाइश के कव्वाली भी अच्छा है ठीक है मैं आपका ज़रूर सुनेबे। ऐसे दूसर मैसेज है मैसेज भेजे वाले साथी हैं ये लिखी है कि मियाँ जी आपका आपके पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार। तो नमस्कार है ये जटा शंकर बड़े ही जो थुकैला से मैसेज भेजी ने कहने कि आपके कार्यक्रम के जितना भी तारीफ किया जाए उतने कम है, कार्यक्रम बहुत अच्छा लागत है, धन्यवाद है। ऐसे रशीद अली दर्जी जो परसपुर वार्ड नंबर 17 जो अलसंदी टेलर से इन्हों मैसेज भेजी ने कहने कार्यक्रम में यहाँ कोई प्यारा से गाना सुना दिया जी। हाँ सुरता आज गाना तो सुने ना मिली कव्वाली आपका सुने का मिली। तो पहला नंबर में क्वेश्चन आज के रहे जब आप लोग ध्यान से सुना जाए एकदम ध्यान से सुना जाए बीमार नहीं रहती फिर भी खाती गोली, बीमार नहीं रहती फिर भी खाती गोली, बच्चे बूढ़े डर जाते हैं सुन के इसकी बोली। एक नंबर में छोटा सा काला घर पर चलता है इधर उधर, दो नंबर में दोनों का सही उत्तर दिया जी। तो साथी आप लोग नंबर में जुड़े रहा जी। तो ले हम चलित है पहले छोटा सा व्यापारी विज्ञापन, विज्ञापन के बाद में आप लोग सुना जाए प्यारा से कव्वाली।
1: आज म एकदम खुसी छु।
2: हैन आज किन यसरी हाँस्दै आएकी छौ त?
1: आज मैले रेडियो कृष्ण शर्मा एउटा राम्रो कलेजको विज्ञापन सुने, मलाई त्यहाँको विशेषता एकदम मन पर्यो, म त भुल्लिनै बाबालाई भनेर जान्छु।
2: ए हो र, ल ल भन न त तिम्रो रोजाई कस्तो रहेछ, हामी पनि जानौ।
1: ल सुन, त्यहाँ त गुणस्तरीय शिक्षा, आधुनिक प्रविधिद्वारा अध्यापन र आफ्नै भवन सहित अत्याधुनिक सुविधा भएको नेपालगञ्ज 12 अवस्थित जिएम कलेजको बिबिएस प्रथम वर्षमा नयाँ भर्ना खुलेको रहेछ। अनि त्यहाँ त सिप अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिमहरू, पर्याप्त अतिरिक्त क्रियाकलापहरू, जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, एजुकेसनल टुर, सिए काउन्सिलिङ क्लास सञ्चालन, मोटिभेसनल क्लास, आइसिटी क्लास, एसी क्लासरुम, इन्डस्ट्रियल फिल्ड भिजिट, क्रिकेट मैदान, बास्केटबल कोर्ट तथा अन्य खेलकुदका क्रियाकलाप, क्यारियर काउन्सिलिङ, जब प्लेसमेन्ट तथा क्याम्पस सेलेक्सन लगायतका विविध कार्यक्रम रहेछन्। यो विज्ञापन रेडियोमा सुनेपछि मैले त यही जाने निर्णय गरे। अब भन तिमीलाई मेरो निर्णय कस्तो लाग्यो?
2: हो रहेछ, एकदमै ठिक लाग्यो मलाई त। अब म पनि मेरो बहिनीलाई लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पास गराउन सफल कलेज जिएम कलेज नेपालगञ्ज 12 मुक्तिपुर बाँकेमै भर्ना गर्छु।
1: ल सुन, त्यसो भए 98580 40388, 98045 086 26 र 98580 85040 आजै सम्पर्क गरेर विस्तृतमा कुरा बुझ है।
2: ल ल हुन्छ हुन्छ ल।
3: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता, सूर्य ज्योति सही प्लान,
4: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स जीवनको लागि।
5: के तपाईँले आफूले प्रयोग गर्ने तोरीको तेलको शुद्धता चेक गर्नुभएको छ? तोरीको तेलको क्वालिटी तपाईँ आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति तेल आफ्नो हातमा लगाई बाँच्न सक्नुहोस्। शुद्ध तोरीको तेलमा नेचुरल राग सधैँ आउँछ र त्यो नेचुरल राग धारा शुद्ध तोरीको तेलमा सधैँ आइरहन्छ। हो, तपाईँले पनि तेलको क्वालिटी आफै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। याद राख्नुहोस्, सबै तेल धारा तोरीको तेल जस्तै शुद्ध चाहिँ नहुन सक्छ। विगत 3 दशकदेखि नेपालीको मुटुलाई स्वस्थ बनाउँदै नेपालको पहिलो एनएस चिन्ह प्राप्त शुद्ध तोरीको तेल धारा, मुटु चाहिन्छ मुटु।
1: वाउ, प्लस टू परीक्षा पनि पास भयो, अब कुन कलेजमा भर्ना हुने होला?
6: ल है, बधाई छ। अनि तिम्रो उज्जवल भविष्यका लागि उत्कृष्ट विकल्प नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी छ नि।
1: ए हो र, त्यहाँ के पढ्न पाइन्छ त? अनि त्यहाँको विशेषता पनि भन्देऊ न।
6: त्यहाँ ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बिबिएस तथा एसिसिए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ। दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकद्वारा गुणस्तरीय शिक्षण, वातानुकूलित एसी कक्षा कोठा, समृद्ध पुस्तकालय, अतिरिक्त क्रियाकलाप, नियमित फिल्ड भिजिट तथा औद्योगिक भ्रमण, आधुनिक शिक्षण वातावरण र विद्यार्थी मैत्री व्यवस्थापन सहित आफ्नो उज्जवल भविष्यको यात्रा सुरु गर्न सकिन्छ।
1: ल तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, त्यसो भए म पनि यही भर्ना हुन्छु।
7: हजुर, प्लस टू परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उच्च शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसीमा ब्याचलर अफ बिजनेस स्टडिज बिबिएस तथा एसिसिए कार्यक्रमका लागि भर्ना खुल्ला भइसकेको छ।
1: नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी आदर्श ग्रुपद्वारा सञ्चालित, ठेगाना नेपालगञ्ज 10 बाँके औद्योगिक क्षेत्रको ठिक अगाडि। थप जानकारीका लागि सम्पर्क 98580 36 577, 98580 28 195 र 98580 36 811। नेपालगञ्ज बहुमुखी क्याम्पस एनएमसी, सफल भविष्यको बलियो आधार।
8: अब सुन्नुहोस् श्री स्टिल्स रेडियो कथा भाग एक। हाम्रो शर्माजीले आफ्नो सपनाको घरलाई श्री एफई 550D एकदम बलियो गरेर बनाउनु भएछ। नयाँ घरमा सरेदेखि नै उहाँको परिवारले हाँस्दै खेल्दै आफ्नो जीवन जिउन थालेछन्। सब एकदम खुसी हुन्छन्। तर त्यसको केही दिनमै एकदम ठुलो भूकम्प आउँछ। रेडियो सुन्दै गर्नुहोस्, अब बाँकी कथा अर्को भागमा। श्री एफई 550D

0: हाँ तो सरताए प्यारा से जो आप लोग सुनागा सुना लागे मदीना हुसैन बिना, खैर बहुत अच्छा है। तो ऐसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए 0812-415-122 के लाइन में कोई साथी फोन लाइन में है उनका स्वागत करी। नमस्कार नमस्कार, आए चले गए कि हैं। नमस्कार
1: नमस्कार मियां जी।
0: हाँ आपके नाम?
1: महेश कुमार कोरी।
0: महेश कुमार कोरी
1: हाँ मियां जी।
0: हाँ और महेश जी बढ़िया है?
1: हाँ बढ़िया है।
0: बस बढ़िया हो चाहे। घर कहाँ?
1: वार्ड नंबर 14 गुलाबपुरवा।
0: गुलालपुरवा
1: गुलामपुरवा गुलाम
0: ये कहाँ पड़ा?
1: वही भौलियापुर के बगले पर।
0: अच्छा और बताओ महेश जी।
1: बढ़िया है।
0: तो कार्यक्रम शुरू से सुना था?
1: हाँ मियाँ जी सुना तो है।
0: हाँ तो क्वेश्चन के उत्तर दे।
1: एक नंबर में कैसे कहा है फिर से बताओ जाए तो पता ही।
0: पहला नंबर में है देखो ना।
1: हाँ,
0: बीमार नहीं रहती फिर भी खाती है गोली, बच्चे बूढ़े डर जाते हैं सुन के इसकी बोली। एक नंबर में है। दूसरे नंबर में है छोटा सा काला घर पर चलता है इधर उधर।
1: पहला नंबर वाला जो है तो हो बंदूक।
0: हाँ
1: दूसरा नंबर वाला हो चंद्रमा।
0: चंद्रमा
1: हाँ।
0: छोटा सा काला घर पर चलता है उधर। चंद्रमा काला कहाँ है? ओके उजेरे मार कोड़ाए कोड़ाए चला था अंधेर हो जाता तो भचाक भचाक गिरा था।
1: अब ठीक है तो जोन जानो तो बता
0: दो। अच्छा देव ठीक है आपका जोन कहा थे जोन जानो तो बताओ है नहीं।
1: हाँ
0: देव ले ठीक है सुनते रहे रेडियो ना
1: बाद में तो।
0: हाँ नमस्कार। हाँ साथी हमरे रहे भवनियापुर से जो महेश कुमार कोरी। तो इसे सुना क्या 0812-115-122 के लाइन में साथी आ जाए कहे से कार्यक्रम जो आप लोगों की घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चला था आप ही प्रिय रेडियो किसी सारे पेम 94.5 MHz से। तो आप लोग ही नंबर में आवाज आए कहते हैं कि वही वाली हाल लगी पे लगाओ तकदीर का आजमाओ जीता जाए परहेज और ज्योति टेलर से ले जाओ। ज्योति टेलर जहाँ सब मेरे के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट सब वेयर कपड़ा सेत है वहाँ से आपका पुरस्कार टी शर्ट दिया जी। तो इससे दूसर मैसेज हमारे हाथ में आएगा है। मैसेज भेजे वाले साथी हैं संगम टेलर जो घरवाई टोल नेपालगंज माता बागेश्वरी मंदिर के ठीक सामने इधर हनुमानगढ़ी के बगल माँ है वहाँ से मैसेज भेजी ने कृष्णा परियार जी लिखी ने कि मियाँ जी नमस्कार। तो नमस्कार मियाँ जी ना ठंडा पानी पिए खो तो गर्म ही पानी पिए गर्म ही पानी पिए चले आओ ढेर दिन होगा मुलाकातों नहीं बाहर ठीक है मौका मिली तो कृष्णा जी आवा जी आप कहागा तो बस हत्ते बहुत खुशी है कहते हंस के प्रेम से बोल दे बस जानो दौलत मोहब्बत ज़्यादा है दौलत मोहब्बत ज़्यादा है।

0: आज परिवार का और तमाम साथी लोगन का सुनावा चाहिए हैं। तो साथी आप लोग नंबर में आओ जाए सुनने के 84151122 के लाइन मैं एकदम जुड़ा जाए। कैसे कार्यक्रम जो आप लोगन के प्यारा कार्यक्रम है जिसमें आपका फ़ोन करे परी तो आप लोग ये कार्यक्रम सुना जाते। तो इससे दूसर मैसेज है मैसेज भेजे वाले साथी हैं। हाँ कोई साथी हमारे फ़ोन लाइन में आ रहे हैं चले गए। अब हम चले थे फिर छोटा सा व्यापारी विज्ञापन मगर एक मैसेज ही आएगा है मैसेज भेजी ने जानकी गांव पालिका वार्ड नंबर 3 बंजारे गांव से मैसेज भेजी ने गोमती प्रसाद वर्मा जी कहने आपका आपके पूरे रेडियो परिवार का मियाँ साहेब नमस्कार। तो नमस्कार है कहने कोई प्यारा से कवाली सुनाई दिया जाए और हमका गोमती के चिन्ह वाले सब जना का सुनाओ चाहे थे। तो साथी अब हम चले थे पहले व्यापारी विज्ञापन के बाद में सुना जी प्यारा से कवाली।
1: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन् खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
2: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
1: कति अस्पताल धायौ कति उपचार गरायौ अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
2: होइन हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
3: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबीएफ क्लिनिक अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
1: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
2: धन्यवाद शुभश्री आइबीएफ हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
3: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबीएफ क्लिनिक सोल्टीमोड काठमाडौँ फोन नम्बर 9861414900।
4: हाय के गर्ने होला अब सुगर पनि बढ्दैछ थाइराइडको समस्या अझ छुट्टै छ कति ठाउँमा देखाए तर भएन।
5: ए तिमी यति चिन्तित किन के भयो फेरि?
4: के भने नि डाक्टरले मलाई हार्मोनको समस्या छ भन्नुभयो अनि त्यसैमा बच्चा नहुँदा मलाई झन् टेन्सन भइरहेको छ।
5: ए अब चिन्ता लिनु पर्दैन मैले राम्रो खबर सुनेको छु।
4: कस्तो खबर?
5: अब प्रत्येक दिन सुगर थाइराइड तथा हार्मोन रोगका विशेषज्ञ डाक्टर अल्ताबान राही एमडी इन्टरनल मेडिसिन टियु एन्डोक्राइनोलोजिस्ट सर गङ्गाराम हस्पिटल दिल्ली यहाँ नै सेवा दिनुहुन्छ।
4: ए साँच्चै?
5: अझ सुन महिला बाझोपन तथा निसन्तान रोग सम्बन्धी पनि प्रत्येक दिन चेक जाँच तथा परामर्श सेवा पनि उपलब्ध छ।
4: ए त्यो त झन् राम्रो
5: हो नि। डाक्टर पूनम आचार्य एमबिबिएस एमडी केयु आइभीएफ स्पेसलिस्ट इन्डिया र डाक्टर सूरज राज भट्टराई एमबिबिएस एमएस केयु वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट जनरल तथा ल्याप्रोस्कोपिक सर्जनबाट सेवा पाइन्छ।
4: वाह अब त मलाई धेरै ढुक्क लाग्यो।
5: अझै अरू सेवाहरू पनि छन् दैनिक ओपिडी सेवा गुणस्तरीय फार्मेसी सेवा भिडियो एक्सरे एक्सरे इसिजी तथा सम्पूर्ण प्याथोलोजी सम्बन्धी जाँच सेवा।
4: यो त पुरा प्याकेज जस्तै भयो नि।
5: हो त अब ढिला नगर जाऊ आजै गइहाल उपचार गर्न।
4: हजुर आजै सम्पर्क गर्नुहोस् सुपर पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर बिपी चोक नेपालगञ्ज फोन नम्बर 081531860 र 081531861।
5: अब चिन्ता होइन समाधानको सही ठाउँ सुपर पोलिक्लिनिक।

0: Toilet Bunny, yeah.
1: Extreme energy drink.
2: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
3: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल ईदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल ईदगाह रोड नेपालगञ्ज, सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 9850303479 र 9840821380।
4: कुष्ठ रोग अभिशाप न होए, इके उपचारों भी संभव है। वही से कुष्ठ रोग के बारे में हम सब लोगन के यहाँ जानकारी पावे जरूरी है।
5: शरीर में यहाँ न खजवाए, छुए से जान न मिले, लाल और खर्रहा दाग दिखाए तो कुष्ठ रोग के शंका कई सका जाते। असल लक्षण अपनक या तो दूसरे के यहाँ दिखाए तो जुड़तीन स्वास्थ्य संस्था में यहाँ जाए के जाँच करावा जाए। सब स्वास्थ्य संस्थान में यहाँ कुष्ठ रोग के दवाई निःशुल्क मिलत है।
4: समय में यहाँ उपचार यानी दवाई की से कुष्ठ रोग पूर्ण रूप में यहाँ नीक होए के साथ शारीरिक अपांगता होए से भी बची सका जात है।
5: जानकारी रहक चाहिए। कुष्ठ रोग बीमारी से प्रभावित और उनके परिवार के यहाँ भेदभाव करब कानूनी अपराध हो। साइनिंग अस्पताल INF नेपाल बाके द्वारा जनहित में जारी संदेश।
6: अम्मा के दवाई करावे के लेकिन समझ में ना आवत है कि कौन अस्पताल माले जाए।
7: कांति आरोग्य अस्पताल है, ये है, काहे चिंता लेत हो। पश्चिम नेपाल के अनुभवी और उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शैल्य चिकित्सक द्वारा विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा भी यहाँ उपलब्ध है।
6: अच्छा, मनी अस्पताल में यहाँ कौन कौन सुविधा है? तो
7: 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जले घाव के उपचार करे के साथ NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर, सुरक्षित प्रसूति सेवा, बाल बालिका और नवजात बच्चन के सामान्य रोग से लेके जटिल रोग तक सब मेर के उपचार भी उपलब्ध है।
6: अस है तो अम्मा के यहाँ आजे लेके जायत हैं, कांति आरोग्य अस्पताल में यहाँ।
7: कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज, सब मेर के उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एक छत के नीचे। संपर्क नंबर 081535717।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाओ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान कम सुने वाले बीमारी लोगों के यहाँ कान में लगावे वाला सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड बिरामी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी, सीआईसी, आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली नेपालगंज छ फुलटेकरा आर्मी ब्यारे के सामने राप्ती रोड बांके। संचालक पूरन चौधरी। संपर्क नंबर 9848020697, 9858023697 और 9814483697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से ओपीडी सेवा हो, एक साथ हैं तमाम मेर के सेवा होत रहा जानकारी करावा चाहा जात है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवश्यक जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा ले साथ जांच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081536465, 9829808665 और 9842880465।
2: हाम्रो बिहे भएको पनि 8 वर्ष भइसक्यो। सबैले एउटै प्रश्न सोध्छन्, खुसीको खबर कहिले सुनाउने भनेर।
3: मलाई थाहा छ तिमी कति पीडामा छौ, तर हामीले अहिले आशा मार्नु हुँदैन।
2: कति अस्पताल धायौ, कति उपचार गरायौ, अब त सपना पनि अधुरै रहने हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ।
3: होइन, हामीसँग अझै आशा छ। मैले शुभश्री आइबीएफ क्लिनिकको बारेमा धेरै सुनेको छु, जहाँ धेरै दम्पतिहरूको काख भरिएको छ।
4: सन्तान सुखको यात्रामा तपाईँको भरोसाको साथी शुभश्री आइबीएफ क्लिनिक, अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सक, आधुनिक प्रविधि र व्यक्तिगत हेरचाह सहित।
2: हाम्रो जीवनमा पनि आखिर त्यो दिन आयो।
3: धन्यवाद शुभश्री आइबीएफ, हाम्रो सपना साकार बनाइदिनु भएकोमा।
4: थप जानकारीका लागि शुभश्री आइबीएफ क्लिनिक, सोल्टीमोड काठमाडौँ, फोन नम्बर 9861414900।
5: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज, कृष्णसार जस तेज

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै सहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँके।
1: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा।
2: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
3: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
4: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पीरा थे, बहुत दवाई कराए डाले, नाई ठीक आते।
5: सुनो बहनी, खुशी के खबर,
6: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपे न पड़ी। पश्चिम नेपाल में यह एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
5: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और वहाँ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिक्स, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रे और अंडकोष और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथ कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जाता है। और जानत हो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाव, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथ प्लास्टर बांधा जाता है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
5: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10 बांके, वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 081-5-31000।
8: अपन स्वास्थ्य के ख्याल रखब सच्चा आत्मविश्वास होए, वही से तो नेपाल परिवार नियोजन संघ बाके शाखा विगत लंबा समय से आप लोगन के सेवा में यहाँ समर्पित है।
9: हमरे यहाँ पूर्ण गोपनीयता के साथ गर्भपतन, परिवार नियोजन के साधन, बच्चेदानी के मुंह और स्तन कैंसर के परीक्षण और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श सेवा उपलब्ध है।
8: विशेष सुविधा,
9: अब हरेक इतवार के दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदेश आचार्य के द्वारा विशेष परामर्श और उपचारों भी पावा जाए।
7: देर न कीन जाए, आजे स्वास्थ्य परामर्श लीन जाए। पता, नेपालगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 9, रामलीला रोड, नापी शाखा के अगारी। फोन नंबर 081-5-30-598।
10: हाम्रो गाउँ हाम्रो शहर, सफा सडक, गुणस्तरीय शिक्षा, भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा र विकासका नयाँ सम्भावना,
1: यी सबैको बलियो आधार हो हामी सबैले इमानदारी पूर्वक तिरेको कर।
10: समयमै कर तिरौ, जिम्मेवार नागरिकको परिचय दिऊ,
1: किनकि आजको हाम्रो करले नै भोलिको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्छ।
10: कर तिरौ समयमै, विकास गरौ सँगै।
1: कर हाम्रो दायित्व, समृद्धि हाम्रो लक्ष्य।
10: आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगंज र रेडियो कृष्णसार एफएम द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

हाँ तो श्रोताब का किया जाए एकदम कार्यक्रम के अंत माहन तो हमारे प्राविधिक जो चंदा जी हैं एकदम हाथ जोड़े बैठे कि मियाँ जी एकदम समय समाप्त है। तो साथी आप लोग एकदम कार्यक्रम का सुनागा हमका भी बहुत खुशी लाग। तो इससे अब्दुल मिन्नान जी रहा हैं जो खजुरा गांव पालिका बठवा से गलत बताएं हैं। ऐसे हमरे महेश कुमार जो कोरी रहा है जो भवनियापुर से ही भी गलत बताएं हैं। हमरे तमाम साथी गलत बताएं हैं। आज के सबसे फर्स्ट नंबर में सही देखो आएगी है रूपा बढ़ही जो डलई प्रवा बाके से। हाँ रूपा जी आपके दिमाग बुद्धि का बहुत ढेर से गर्व बधाई है। देखो आप विजेता बनागा। तो जैसे पहले रहे मैं सीधी शादी खाती रही हूँ मेहमान और ये बूढ़े बच्चे सुन के बोली ये हो बंदूक ऐसा दो नंबर में है छाता बहुत सही बताएं। तो आज के कार्यक्रम जो आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ के सुनागा आप लोगों का दिल से धन्यवाद दी थे। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जफरुद्दीन और पप्पू जी ज्योति टेलर के उनका उनके पूरे परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद दी थे। कार्यक्रम का देश दुनिया में आइडियो वीडियो सब हमरे दिल लगाए के जो हमरे प्रादिक में जो सामने एकदम दिल लगा के हमरे जो चंदा जी पठैन बहुत खुशी हैं मुसुर मुसुर मुस्कियात हैं कि पूरा कार्यक्रम का मोहब्बत के साथ माँ और प्यार प्रेम के साथ माँ श्रोता लोगन के घर दैलो और गाँव शहर देश विदेश हर जगह पर ऊपर वाले के दुआ से प्रकाश के जैसे आइडियो वीडियो सब पहुंच गया उनका भी चंदा जी का भी बहुत दिल से धन्यवाद देते। प्यारा से हातिम थाई फिल्म के कव्वाली छोड़ते हम संचालक मियां विदा ली थे। खुदा हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम नमस्कार।

0: से अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर नेपाल का अपने क्यूआर।
1: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाख को बीमा तिरेको सम्पूर्ण प्रीमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
2: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवन को लागि।
3: बीर डेंटल
4: नेपालगंज शहरमा सञ्चालित अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न बीर डेंटलमा दाँत तथा मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार काठमाडौँ तथा भेरी अञ्चल अस्पतालका अनुभवी वरिष्ठ डाक्टर आरके लामिछानेद्वारा उपचार गरिन्छ।
5: डाक्टर लामिछानेद्वारा गरिने विशेष उपचारहरू: दाँत सफा गर्ने, दाँत भर्ने, दाँत निकाल्ने, दुखेको दाँतको जराको उपचार, खाली ठाउँमा दुरुस्त प्राकृतिक जस्तै नक्कली दाँत राख्ने, बाङ्गो टिङ्गो तथा नमिलेको दाँत फिक्स अर्थोडन्टिक प्रविधिद्वारा मिलाउने, गिजाको रोग जस्तै गिजा सुन्निने, रगत ताउने, पिप बग्ने, मुख गनाउने र दाँत हल्लिने समस्याको उपचार, पहेँलो खैरो दाँत, सानो र ठुलो दाँत, छिद्र तथा ग्याप भएको दाँतलाई कस्मेटिक उपचार प्रविधिद्वारा राम्रो बनाउने, दाँत मुखको चोटपटक तथा बङ्गारका हड्डी भाँचिएको पनि उपचार हुने।
4: सम्पर्क बीर डेन्टल क्लिनिक, भेरी अञ्चल अस्पतालबाट 150 मिटर त्रिभुवन चोक तर्फ।
5: फोन नम्बर 081-532-375।
6: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाये तो ठीक रही, तनी बताई दो हमका।
7: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जात है।
6: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जात है।
7: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुर्खेत रोड नेपालगंज बांके, संपर्क नंबर 9844-88-3575 और 9802-825-4037।
8: नींद ना आए हमको, हाय जग सोना है।
6: बाबा के

0: सस्ता से लेके महंगा महंगा तक मेरे मेरे के मॉडल के कान की मशीन हेयरिंग एड ग्रामीण लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। बीटी सीआईसी आरआईसी जैसन मशीन भी यहाँ उपलब्ध है।
1: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
0: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे दवाई दर मत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केंद्र प्राली नेपालगंज फुलटेकरा आर्मी बैरक के सामने राप्ती रोड बांके संचालक पूरन चौधरी संपर्क नंबर 9848020697 9858023697 और 9804483697। बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहां सहभागी हुआ जाए नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
1: भैया बहुत दिन से महिनवारी में यहाँ गड़बड़ी सफेद पानी बहाव और पेट पीराव समस्या से बहुत दुख पाए चुके हैं। कहाँ जाए तो बढ़िया रही।
0: हम भी पहले गैस्ट्रिक बवासीर और पेट के समस्या से बहुत परेशान रहें। बाद में यहाँ नेपालगंज के मेडिकेयर क्लिनिक गए। वहाँ मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के समस्या के उपचार और ऑपरेशन एक ही जगह होते है। अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर से सेवा मिले के बाद अब बहुत आराम हुआ है।
1: सही वहाँ का सेवा मिलते है तो भैया
0: सुनो। हुआ औरतन के बांझपन सफेद पानी महीनावारी में गड़बड़ी गर्भवती जांच बच्चादानी और स्तन संबंधी समस्या के उपचार होते है। और पुरुष या अन्य बीमारी लोगों के खातिर गैस्ट्रिक बवासीर हर्निया अपेंडिक्स थायराइड पित्त थैली और शरीर में यहाँ गिल्टी और तमाम मेर के लैप्रोस्कोपिक और लेजर सर्जरी सेवा भी उपलब्ध है।
2: हाँ मेडिकेयर क्लिनिक में यहाँ वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक दूरबीन और लेजर सर्जन डॉक्टर कमर हसन अंसारी और वरिष्ठ लैप्रोस्कोपिक स्त्री और कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमीरुन निशा से सेवा देते हैं। आप भी आज ही कोई भी चेक जांच और ऑपरेशन के खातिर नामदर्ता कह के तहे दिल हुआ जाए।
0: मेडिकेयर क्लिनिक नेपालगंज उप महानगर पालिका वाड़ा नंबर 11 बीपी चौक के नेरेन उप महानगर पालिका के कार्यालय के लाइन में यहाँ संपर्क नंबर 9769411786 9824923377। सबके संयुक्त आवाज मेडिकेयर क्लिनिक मर्दे और मेहरुए दोनों लोगों के स्वास्थ्य उपचार के विश्वसनीय गंतव्य।
3: Back to back. In this song on. Stay tuned.

0: निसन्तानपन सम्बन्धी निशुल्क स्वास्थ्य शिविर नेपालगञ्जमा। यही आउँदो 2083 साल असार 27 गते शनिबार शुभश्री आइबिएफ क्लिनिक काठमाडौँ र मध्यपश्चिम पोलिक्लिनिक प्राली नेपालगञ्जको संयुक्त आयोजनामा निसन्तानपन सम्बन्धी विशेषज्ञ डाक्टर प्रियङ्का त्रिपाठी आइबिएफ एक्सपर्ट सहितको टिमबाट निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन हुन गइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौ। प्रदान गरिने सेवाहरू: ओपिडी निशुल्क, वीर्य परीक्षण निशुल्क, अल्ट्रासाउन्ड निशुल्क र ल्याब परीक्षणमा 15% छोट। स्थान: मध्यपश्चिम पोलिक्लिनिक प्राली नेपालगञ्ज 10 बाँके सदर लाइन टाँगा स्ट्यान्ड नजिक। समय: नाम दर्ता तथा अन्य जानकारीका लागि समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। सम्पर्क नम्बर 9861414900।
1: होइन कौशल्या मेमोरियल अस्पताल यही थियो त।
2: ओहो बाजे, अब उता आएन, ठ्याक्कै यता हेर्नुहोस् त पूर्वपट्टि।
3: हाम्रा सेवाहरू: इन्टरनल मेडिसिन तथा फ्यामिली फिजिसियन सेवा, हार्ट जोड्नी तथा नसा रोग विशेषज्ञ सेवा, नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ सेवा, प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ सेवा, छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ सेवा, दाँत बङ्गारा तथा मुख सम्बन्धी विशेषज्ञ सेवा, एकुपंक्चर तथा फिजियोथेरापी सेवा, 24 घण्टा रोड एक्सिडेन्ट इमर्जेन्सी सेवा, 24 घण्टा ल्याब एक्सरे र ख वर्गको एम्बुलेन्स सेवा, एयर कन्डिसन इमर्जेन्सी वार्ड, स्ट्यान्डर्ड वार्ड तथा क्याबिनहरू।
4: हजुर, कौशल्या मेमोरियल अस्पताल, कोहलपुर नगरपालिका, वडा नम्बर 9, हलदारपुर, बाँके। सम्पर्क नम्बर 0184140007 र 9842863399।
5: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
6: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि।
7: हाय रे दीदिया, हमार टिहुनी बहुत पिरात है, बहुत दवाई कराए डारे, नाई ठीक आते।
8: सुनो बहनी, खुशी के खबर,
9: अब ऑपरेशन के खातिर काठमांडू और लखनऊ दौरे धूपे न पड़ी। पश्चिम नेपाल में यह एकमात्र आधुनिक अल्ट्रासाउंड के सुविधा है।
8: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में यहाँ मूत्र और दिल गुर्दा रोग के सब ऑपरेशन दूरबीन प्रविधि के द्वारा किया जाता है। और हुआ पेट संबंधी सब मेर के दवाई, पित्त थैली के पथरी, अपेंडिस, हार्निया, हाइड्रोसील, बवासीर, फीसर, भगंदर जस पुरुष लोगन में यहाँ लिंग, ब्रे और अंडकोश और मर्दांगनी के कमी हुए समस्या साथेन कैंसर संबंधी सब दवाई ऑपरेशन किया जात है। और जानत हो, हाथ गोड़ करिहाव, रीढ़, टिहुनी पिराप, झंझनाहट हो, नस पिराप, झमझमाप, हड्डी टूट फूट भवा है तो दवाई और ऑपरेशन के साथेन प्लास्टर बांधा जात है। महिला लोगन में यहाँ सफेद पानी बहाव, महीनावारी में यहाँ गड़बड़ी, निसंतानता, गर्भवती लोगन के नियमित चेक जांच, बच्चेदानी और स्त्री रोगन के सब मेर के दवाई के साथ ऑपरेशन किया जात है। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता, कंसल्टेंट सर्जन, यूरो सर्जन, जनरल कैंसर, मूत्र रोग तथा मृगौला रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर राहुल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, हार्ट जोड़नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ।
8: कृपा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सुर्खेत रोड, आदर्श नगर, नेपालगंज 10, बाँके। वन कार्यालय के नेरेन, पेट्रोल पंप के पछुए। संपर्क नंबर 0185315000।
11: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
12: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदैछ नि, पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
11: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
12: 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै एनआइसियु, पिआइसियु, आइसियु, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसूति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
11: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
12: कान्ति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
11: सम्पर्क नम्बर 0185357017।
13: हजुरबालाई लामो समयदेखि कानको समस्या छ, नेपालगञ्जमा भरपर्दो र विश्वासिलो अस्पतालका लागि कहाँ जाने होला?
12: ए त्यसो भए त चिन्तै लिनु पर्दैन नि, नेपालगञ्जमै रहेको बागेश्वरी कान स्वास्थ्य स्याहार केन्द्र छँदैछ नि। यहाँ त अनुभवी विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिकबाट हरेक दिन कान परीक्षण गरिन्छ। त्यति मात्र कहाँ हो र, यहाँ त लामो समयदेखि कान पाकिरहने जीर्ण रोग, काने ढुसी, कान चिलाउने, कान कम सुन्ने, कान डम्माउने बिरामीहरूको उपचार तथा परामर्श र लामो समयदेखि कान पाकिरहँदा कानको जालीमा प्वाल परेको, कान हड्डी खाने रोगको शल्यक्रिया अपरेसनबाट उपचार गरिन्छ। साथै कान कम सुन्ने बिरामीहरूका लागि कानमा लगाउने सस्तोदेखि महँगोसम्मका विभिन्न मोडेलका कानका मेसिन हियरिङ एड बिरामीहरूको चाहना अनुसार उपलब्ध गराइन्छ। बिटिई, सिआइसी, आरआइसी जस्ता मेसिनहरू पनि यही उपलब्ध छन्।
13: ए त्यसो भए हजुरबालाई त्यहाँ लगेर उपचार गराउँदा स्पष्ट सुन्न सक्नु होला त?
12: अवश्य, समयमा उपचार गरेपछि धेरै सुधार सम्भव हुन्छ।
13: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेवा केन्द्र,
12: नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, वडा नम्बर 6, फुलटेक्रा, आर्मी ब्यारेक सामुन्ने, राप्ती रोड, बाके, सञ्चालक पुरन चौधरी।
13: सम्पर्क नम्बर 98 84 20 697, 98 85 23 697 र 98 014 83 697।
12: बहिरोपण निवारण कार्यक्रममा सहभागी हौ, नियमित कानको जाँच गरौँ।
14: In this song on Stay tuned.

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतानी प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: मामा चाउचाउ प्याकेट भित्र रहेका कुपनहरू हल्का प्लस रमाइलोलाई मिलाउनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् एक प्याकेट मामा चाउचाउ सित्तैमा।
1: मामासँग हल्का रमाइलो।
2: बधाई है भैया, सुने हैं बिटिया के बिहा ठीक होइगा है, यही सुन के आपसे मिले चली आई हैं।
3: हाँ तो बहनी, बिटिया के 16 साल में बढ़िया लड़का मिल गवा, अब तो चिंता खत्म होइ गवा, तहे दिल भी होइ गेन।
2: भैया, बिटिया तो अभी 16 साल के खाली भाई है, आप बहुत बड़ा गलती करत हो। सुनो भैया, हमहू 16 साल की उम्र में यहाँ बिहा कह के आई रहीन, सब कहत रहे भागमानी है बिटिया, लेकिन हमार पढ़ाई छूटा, हमार सपना टूटा और हमार बचपनो छूट गवा। अब हमार आदमी दूसर विवाह कह के अलग रहत गवा। अब हमार आदमी दूसर विवाह कह के अलग रहत है, हमार

0: साहब से 20 साल न पहुँचते विवाह करे या करावे ना मिलत है। ये मेरे के भवा विवाह स्वतः बदर हो जाये। यदि 20 साल उम्र न पहुँचते बाल विवाह करे या करावे वाले इनके यहाँ 3 साल तक जेल और 30,000 रुपया तक जुर्माना हो सकत है।
1: ठीक है बहनी, तुम तो हमारा आँख खोल दियो। अब हमारे बिटिया के कांध में यहाँ विवाह के जिम्मेवारी न हो के सपना के किताब के बोझ हुई है। वो पढ़ के सक्षम हो गई है तब उनके विवाह के बारे में सोची।
0: हाँ, बाल विवाह परंपरा न होए, लड़का बिटियन के अधिकार के हनन होए,
2: बाल विवाह रोका जाए, बिटिया लोगन के भविष्य बचावा जाए।
3: सामाजिक विकास मंच SDF बांके, वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल नेपाल और रेडियो कृष्णसार FM द्वारा जनहित में जारी संदेश।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: बद्ध होए खातिर आज अपन बैंक वित्तीय संस्था या वॉलेट में संपर्क करा जाए। मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस तथा इंटरनेशनल पेमेंट ऐप से नेपाल पे क्यूआर में आसानी से भुगतान प्राप्त करा जाए। नेपाल पे क्यूआर, नेपाल का अपने क्यूआर।
1: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
2: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
1: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
2: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
1: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँकी।
2: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा।
3: चर्चा छ मार्केटमा, हाम्रो नाम घन्किन्छ।
4: अरे सुन त, यो बाटा पाजर यो बा
5: काहुल बाबु, अपने कलकलाइत रही, अपने काकर कलकलाइत रही। ले यो भुइयामा के हो, काकर भुइयामा ढनमानाइल बाटी।
4: मोर
5: एकजाने मोटरसाइकल वाला संघरिया बा फोन कई डारू अपने नी आता है ना संघरिया ध्यान दी। हेलो मुकेश, तू झट्टे ही मोटरसाइकिल लेके यहाँ आ जाऊ। यहाँ एक जना बाबू है ना सपवा काट के ना इमरजेंसी पर गिल, तुरंत ही उपचार केंद्र में ले जाए पड़ल। राजमार्ग 84 100 मीटर पश्चिम बाऊ पांचर बाटी ना हमरा। मुकेश झट्टे ही आओ, हाँ सबको काम छोड़ खा।
6: बैठा संतोष, मैं मोटरसाइकिल लेके आई गिनू झट्टे ही।
5: सुनी बाबू, सपो कटलक मने है ना जत्रा साइकिल झट्टे ही एंटी वेनम उपलब्ध हुई उपचार केंद्र में ले जा रही पड़ता। ऐसी ब्याला में सबसे झट्टे हुई ना यातायात के साधन वाजे पर था। यदि मोटरसाइकिल के व्यवस्था बाकले से अपने वो सवारी चालक के बीच में सपो कटलक मने है ना सुरक्षित हुई ना मेर से बैठा कर तुरंत उपचार केंद्र पुगाई पड़ता। तू मुकेश मोटरसाइकिल लेके आ गई मोर भर पर ना संघरिया, मैं तुरंत बेरे में है ना मुकेश के मोटरसाइकिल में बीच से बैठा कर ना उपचार केंद्र पुगा डार तू अपने मोटरसाइकिल लेके ओरी आई।
7: काट करी सांप डसला से मोटरसाइकिल स्वयं से बिबलाई, सर्पदंश उपचार केंद्र जाकर जान बचाई।
8: यदि समय में जो उपचार कर सकल से सांप डसलक मन बचाई सक जिठा, वो यही मसे हुई ना मृत्यु डर फे कम कर सक जिठा। सांप डसलक मन यहाँ छट्ट से छट्ट उपचार केंद्र में ले जा डारी, यही ले ऊ मन एक जीवन बचाए भारी मदद कर था। विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग, वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पट्टा लगाए लाग। आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाख आवश्यक जानकारी लिहे सक जिठा।
9: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
10: अब सुन्नुहोस् श्री स्टिल्स रेडियो कथा भाग एक। हाम्रो शर्माजीले आफ्नो सपनाको घरलाई श्री एफई 550D ले एकदम बलियो गरेर बनाउनु भएछ। नयाँ घरमा सरेदेखि नै उहाँको परिवारले हाँस्दै खेल्दै आफ्नो जीवन जिउन थालेछन्। सब एकदम खुसी हुन्छन्। तर त्यसको केही दिनमै एकदम ठुलो भूकम्प आउँछ। रेडियो सुन्दै गर्नुहोस्। अब बाँकी कथा अर्को भागमा। श्री एफई 550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील।
11: दैनिक रु 197 मा रु 50 लाखको बिमा, तिरेको सम्पूर्ण प्रिमियम फिर्ता। सूर्य ज्योति सही प्लान,
12: सूर्य ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवनको लागि

0: pile up on ya. Extreme energy drink.
1: व्यवसायिक कृषि पद्धति अपनावे के खातिर कृषक वर्ग के यहाँ कृषि व्यवसायक प्रवर्धन सहयोग और तालीम केंद्र खजुरा बाके के विशेष अनुरोध।
2: कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसायिक पद्धति अपनाए के आय मूलक व्यवसाय मार्फत आत्मनिर्भर बना जाए और बनावा जाए। कृषि पेशा के यहाँ मर्यादित बनावे उद्यमशील विकास कई के रोजगारी सृजना करा जाए करावा जाए। कृषि व्यवसाय में यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण कई के आमदनी मूलक व्यवसाय छनौट करा जाए। खेती व्यवसाय के नियमित अभिलेख रख के विश्लेषण करक बानी बैठावा जाए। बाजार देख के मात्र उत्पादन योजना बनावा जाए। व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तैयार कई के कार्यान्वयन करा जाए। सफल उद्यमी बनो, व्यवसाय के यहाँ निरंतरता देव, विस्तार करा जाए करावा जाए। कृषि प्राविधिक विज्ञ लोगन से नियमित सर सलाह और सुझाव लीन जाए और वही अनुसार व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करा जाए करावा जाए।
1: अकेले प्रयास से कृषि क्षेत्र में यहाँ व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूप में यहाँ कार्यान्वयन न कई सके कारण से हम लोग निजी और सरकारी सब सरोकार वाला लोग एकजुट होई के अपन अपन भूमिका निर्वाह संबंध में सहकार और प्रयास करा जाए करावा जाए।
2: तब आवश्यक सर सलाह और जानकारी के खातिर नेरे के संघीय तथा प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा उपलब्ध करावे वाले कार्यालय केंद्र प्रयोगशाला निर्देशनालय और स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में यहाँ संपर्क रखे खातिर अनुरोध करा जाते है। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालीम केंद्र खजुरा बांके।
3: नाक कान र घाँटीका रोगीहरूको लागि विशेष सूचना।
4: भेरी अञ्चल अस्पतालमा लामो समय काम गरी सेवा निवृत्त प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी विशेषज्ञ डाक्टर रमेश कुमार श्रेष्ठ र हाल भेरी अञ्चल अस्पतालमा नाक कान घाँटी विभागमा कार्यरत ईएनटी कन्सल्टेन्ट डाक्टर सगुन श्रेष्ठसँग उपचारको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्जमा हप्ताको सातै दिन सेवा उपलब्ध छ। हाम्रा थप सेवाहरू एक्सरे, इन्डोस्कोपी, प्रयोगशाला, अडियोग्राम तथा आवश्यक परेको खण्डमा बिरामीलाई अपरेसनको पनि व्यवस्था छ। विस्तृत जानकारीको लागि मिलिजुली मेडिकल हल इदगाह रोड नेपालगञ्ज सम्पर्क फोन नम्बर 081531380, मोबाइल 9850303479 र 9840821380।
5: उचित शुल्कमा उत्कृष्ट शिक्षा कहाँ पाइएला?
6: त्यसका लागि नेपालगञ्जको धम्बोजीमा अवस्थित सन्मिम इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल छँदैछ नि।
5: हाम्रा विशेषताहरू:
6: अनुभवी तथा दक्ष शिक्षक भएको,
5: सुरक्षित वातावरण र यातायातको सुविधा भएको,
6: मनोविज्ञानमा आधारित शिक्षण सिकाइ,
5: अतिरिक्त क्रियाकलापमा विशेष जोड,
6: वातानुकूलित कक्षा कोठा,
5: अत्याधुनिक प्रयोगशाला, खेलकुद र अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापहरू मार्फत विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकासमा विशेष ध्यान दिइने,
6: एसईमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल यस विद्यालयमा कक्षा 11 व्यवस्थापन संकायमा भर्ना खुलिसकेको छ।
5: सिट सीमित छन्, आजै भर्ना हुनुहोस्।
6: सन्बिम इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल, नेपालगञ्ज 1, धम्बोजी, बाँके। सम्पर्क नम्बर 081536422, 98580-36422, 98580-27994।
7: यो कृष्ण सार एफएम
8: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: Toilet Pony, yeah.
1: Extreme energy drink.
2: व्यावसायिक कृषि पद्धति अप्नाएकला किसान हुकरन कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग ओ तालिम केन्द्र खजुरा बाँकेके विशेष अनुरोध
3: कृषि क्षेत्रमा व्यावसायिक पद्धति अप्नाई हो आयमूलक व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनी हो बनाई कृषि पेसा है मर्यादित बनाएक उद्यमशीलता विकास कैके रोजगारी सृजना करी हो कराई
2: कृषि व्यवसायमा तुलनात्मक विश्लेषण कैके आमदानी ऐना व्यवसाय छनौट गरी खेती व्यवसायके नियमित हर हिसाब राखके विश्लेषण कैना बानी बैठाई
3: बजार हेरके खाली उत्पादन योजना बनाई व्यवहारिक व्यवसायिक योजना तयार कैके लागू गरी
2: सफल उद्यमी बनियो व्यवसाय हे निरन्तरता दि आगे बढाई हो बढाइक लगाई कृषि प्राविधिक विज्ञ हुकरन से नियमित सरसलाह हो सुझाव ली वो उहे बमोजिम व्यवसायिक कृषि पद्धति आवश्यकता अनुसार अवलंबन करी ओ कराई एकल प्रयास से कृषि क्षेत्रमा व्यवसाय प्रवर्धन प्रभावकारी रूपमा करे निसेकना हुईले ओहर से हमरे निजी ओ सरकारी सब सरकार वाला एकजुट होके अपन अपन भूमिका निर्वाह कैके समन्वय सहकारिक लाग प्रयास करी वो कराई
3: थप आवश्यक सरसल्लाह वो जानकारी लाग लगभग संघे वो प्रादेशिक स्तर के सरकारी कृषि सेवा देना कार्यालय केन्द्र प्रयोगशाला निर्देशनालय वो स्थानीय तह के कृषि विकास शाखा में संपर्क करेक लाग अनुरोध बा
2: कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तालिम केन्द्र खजुरा बाँके

0: खुल्यो खुल्यो खुल्यो
1: तपाईको आफ्नै शहर कोहलपुरमा टीवीएस शोरूम खुल्यो।
0: स्टाइल, पावर र भरोसा अब एकै ठाउँमा
1: कोहलपुरमै पाइन्छ। टीवीएस का नयाँ बाइक र स्कूटर, दमदार परफर्मेन्स र उत्कृष्ट माइलेज का साथ सेल्स सर्भिस र स्पेयर्स, सबै सुविधा एउटै छानामुनि, साथमा फाइनान्सको सुविधा पनि।
0: आजै आउनुहोस् नेपाल अटो पार्ट्स एन्ड सप्लायर्स, कोहलपुर 11 बाँकी।
1: हजुर, नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा। सम्पर्क नम्बर 98125 26 711 र 98 20 18 37 86। नेपाल अटो पार्ट्स, भरोसाको यात्रा।
2: बहिनी, हमार घर तो बढ़िया है, मने पुरान फर्नीचर तो घर के चमक हटाए दी जस लागत है।
3: हाँ तो दीदिया, अब तो घर के यहाँ नया परिवर्तन देहिन का परी जस लागत है। आरामदायी और मॉडर्न कुछ चाही।
2: अच्छा, ऐसा तो चिंता काहे करी हो, स्टार फर्नीचर लैंड में यहाँ तो सब मिलत है।
3: साचू दीदिया, का का मिलत है हुआ?
2: सुनो बहिनी, स्टाइलदार सोफा, आरामदायी बेड, आकर्षण डाइनिंग टेबल, टीवी रैक, ऑफिस फर्नीचर, गलीचा कारपेट के साथ है, घर सजावे वाला सब सामान चीज एक जगह में मिलत है।
3: और डिजाइन अपनी इच्छा अनुसार बनाई के देते है?
2: काहे न बनाई दी बहनी, अपने चाहे जिस डिजाइन अनुसार भी बनावत है।
3: और मने डिलीवरी और फिटिंग?
2: अरे बहनी, बांके और बर्दिया जिला तक फ्री होम डिलीवरी है, इके साथ है फ्री फिटिंग सेवा तो बिल्कुल ही फ्री है।
4: आस है तो अब हमरो घर भी नवाजस बनावे है, स्टार फर्नीचर लैंड से शुरू कीन जाए।
3: हाँ दीदिया,
5: स्टार फर्नीचर लैंड शिक्षा कार्यालय के सामने बीपी चौक नेपालगंज। संपर्क नंबर 98680 73 70 और 98195 0 67 82।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी